0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, बुधवार कार्यक्रम के अंतर्गत संगीत कला एवं सुंदरता के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं।
1: La musica, l'arte, la bellezza è veramente uno strumento che ci aiuta a guardare con il movimento verso Dio, quello che è veramente una delle parti migliori dell'essere umano.
0: संगीत कला एवं सुंदरता मनोरंजन के अच्छे माध्यम हैं, लेकिन इनका महत्व सिर्फ इतना ही तक सीमित नहीं है। ये हमें ईश्वर की ओर एवं मानव जीवन के सर्वोत्तम मूल्यों की ओर अग्रसर करते हैं। कस्तिल गंदोल्फो में पोप लियो 14वें के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अल्बानो धर्म प्रांत ने उनके सम्मान में एक विशेष संगीत संध्या का आयोजन किया।

0: Albano che Thamadash Vincenzo Viva ne kaha.
1: Il fatto che Vostra Santità abbia trovato qui un luogo per il riposo settimanale, per la pausa estiva, ci onora e ci riempie di gratitudine.
0: संत पिता ने अपने पोप बनने के इस पहले अत्यंत व्यस्त एवं फलदायी वर्ष के दौरान अपने विश्राम के लिए कस्तिल गंदोल्फो को एक प्रिय एवं शांत स्थान के रूप में चुना है। यह एक ऐसा आश्रय स्थल है जहां शांति, मनोहरी प्राकृतिक सौंदर्य, इतिहास एवं कला एक साथ मिलकर तन और मन दोनों को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहाँ पोप की उपस्थिति अल्बानो के स्थानीय कलीसिया और इस क्षेत्र के लोगों के लिए अत्यंत हर्ष एवं आनंद का कारण बनी है। इस पर पोप ने अपने संबोधन में दुनिया की वर्तमान परिस्थिति पर गौर करते हुए कहा,
2: Viviamo in un mondo oggi dove manca la bellezza tante volte. Tanti problemi, guerre, conflitti, odio, violenza, mancanza di lavoro e tante altre cose.
0: हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कभी-कभी सुंदरता की कमी महसूस होती है। ऐसे समय में एक साथ जमा होना वास्तव में एक महान उपहार है। उन्होंने कहा, युद्ध, संघर्ष, नफरत, हिंसा, बेरोजगारी और अनेक चुनौतियों से घिरी इस दुनिया में भी सुंदरता लोगों को एकजुट कर सकती है और उनके दिलों को आशा से भर सकती है। शनिवार शाम को कस्तिल गंदोल्फो स्थित प्रेरितिक आवास के प्रांगण में आयोजित संगीत कार्यक्रम में पोप ने कहा कि ऐसे समय में एक साथ आना अपने आप में एक बड़ी बात है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया की परेशानियों से बढ़कर भी कोई चीज है। जब लोग मिलकर एक साथ आने का चुनाव करते हैं तो वे उस सुंदरता को प्रकट करते हैं जो दिल से दिल तक पहुँचती है और हमारी दृष्टि को स्वर्ग की ओर उठाने में मदद करती है। पोप लियो चौधरी ने आगे कहा,
2: Sapete che un po' più di un mese fa ho fatto un viaggio apostolico in Spagna.
0: जैसा कि आप जानते हैं, एक महीना पहले मैं स्पेन गया था। उस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भी हमारी दृष्टि को स्वर्ग की ओर उठाना था। संगीत, कला एवं सुंदरता ऐसे माध्यम हैं जो हमें ईश्वर की ओर और मानव जीवन के सर्वोत्तम मूल्यों की ओर अग्रसर करते हैं। ये ऐसे साधन हैं जो जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठकर हमें सुंदरता का अनुभव कराते हैं। यही सुंदरता हमें ईश्वर के निकट ले जाती और हमारे भीतर नई आशा का संचार करती है। उन्होंने कहा कि शनिवार शाम का यह संगीत कार्यक्रम इसी अनुभव का सजीव उदाहरण था। वायलिन वादक मार्को रोलियानो, पियानो वादक रोसाना तोमासी गोलकर और संगीत निदेशक मैस्त्रो पियर कार्लो ओरिजियो ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए जो विंचेंसो बेलियने के प्रसिद्ध ओपेरा नॉर्मा पर आधारित था। अपने संबोधन में पोप लियो ने संगीतकारों एवं कलाकारों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं सभी कलाकारों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनके संगीत ने मुझे गहराई से भाव विभोर कर दिया है। उन्होंने अल्बानो धर्म प्रांत के प्रति भी आभार जताते हुए कहा,
2: Alla diocesi di Albano che ha offerto questo concerto, questo hermoso dono.
0: इस संगीत कार्यक्रम का आयोजन यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए एक अनमोल उपहार है। सुंदरता से भरे इन क्षणों में हम सभी ने उस महान अनुभव को महसूस किया है जो हमें ईश्वर की सृष्टि के मूल उद्देश्य सुंदरता के और निकट ले जाता है। संगीत संध्या की शुरुआत अल्बानो धर्म प्रांत के बिशप विंचेंसो वीवा के स्वागत संबोधन से हुए। उन्होंने पोप लियो चौदहवें का कस्तिल गंदोल्फो में पुनः आगमन पर स्वागत करते हुए कहा कि स्थानीय कलीसिया उनके आगमन से अत्यंत प्रसन्न एवं कृतज्ञ है। बिशप ने बतलाया कि इस संगीत कार्यक्रम का उद्देश्य पोप के प्रति आभार व्यक्त करना और संगीत के इस अनमोल उपहार को सभी को बांटना। विंचेंसो वेल्लिने के प्रसिद्ध ओपेरा नॉर्मा का उल्लेख करते हुए बिशप वीबा ने उन महिलाओं एवं माताओं को भी याद किया जो दुनिया के विभिन्न युद्धग्रस्त क्षेत्रों में अपने बच्चों और परिवारों के साथ संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत चुका रही हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं महिलाओं में एक ऐसे भविष्य की आशा दिखाई देती है जो मेल मिलाप एवं शांति पर आधारित है। यह संदेश पोप लियो चौदहवें की उस शांति अपील को भी प्रतिध्वनित करता है जिसमें वे अपने पोप काल की शुरुआत से लगातार दोहराते आ रहे हैं। इस संगीत कार्यक्रम में 19वीं सदी के इटली के दो महान संगीतकारों निकोलो पागानिनी और विंचेंसो बेलिनी की रचनाओं को एक साथ प्रस्तुत किया गया। दोनों कृत्यों की मधुर एवं भावपूर्ण शैली ने वाद्य संगीत की उत्कृष्टता एवं ओपेरा की अभिव्यक्ति को एक अनूठे संगीत सफर में पिरो दिया। विशेषकर बेलिनी के प्रसिद्ध ओपेरा नॉर्मा की पुनर्व्याख्या ने पियानो और ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से इसकी नायिका की पीड़ा, क्षमा एवं आत्म बलिदान की यात्रा को जीवंत किया। इस प्रस्तुति ने एक व्यक्तिगत कहानी को प्रेम एवं शांति की शक्ति पर आधारित एक सार्वभौमिक संदेश में बदल दिया। संगीत कार्यक्रम इस बात का भी प्रतीक था कि युद्ध की विभीषिका के बीच भी सुंदरता एवं आशा की आवाज गूंज सकती है। कस्तिल गंदोल्फो की शांत फिजा से उठी यह आशा पूरी दुनिया तक पहुंचने का संदेश देती है। संगीत संध्या का समापन ऑर्केस्ट्रा के पीछे लगी स्क्रीन पर तारों से भरे आकाश के मनमोहक दृश्य के साथ हुआ। प्रस्तुति के बाद पोप लियो चौदहवें ने कलाकारों एवं उपस्थित लोगों से मुलाकात की, उनका अभिवादन स्वीकार किया एवं परंपरागत शुभकामनाओं का आदान प्रदान करने के बाद प्रेरितिक आवास के प्रांगण से विदा हुए। श्रोताओं, बुधवार कार्यक्रम के अंतर्गत कस्तिल गंदोल्फो के प्रेरितिक आवास के प्रांगण में आयोजित संगीत कार्यक्रम में पोप के संदेश एवं कला तथा सौंदर्य के महत्व के बारे में सुन रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने अमेरिका में समर्पित पुरुषों के प्रमुख वरिष्ठों के सम्मेलन CMSM को भेजे एक पत्र में शुक्रिया अदा किया। यह 2026 राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अपनी 70वीं सालगिरह मना रहा है, जो फीनिक्स परिजोना में 20 से 23 जुलाई तक हो रही है, जिसकी थीम है मसीह में आज का सामुदायिक जीवन। 26 जुलाई को लिखे इस पत्र में, जो सम्मेलन के कार्यकारी निदेशक फादर फ्रैंक डोनियो SAC को लिखा गया था, संत पापा ने कहा कि जब वे अमेरिका के पुरुष धर्म संघियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के 7 दशक पूरे कर रहे हैं, यह इन सालों में मिली कृपा के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का सही समय है। संत पापा ने बातचीत के लिए जगह देने और अपने सदस्य समुदायों के नेताओं को सपोर्ट करने की उनकी कोशिशों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि इससे मसीह को समर्पित और उनके उदाहरण पर चलने वाले समर्पित लोगों की सार्वजनिक गवाही को मजबूत करने में मदद मिली है। इस साल के सम्मेलन की थीम पर सोचते हुए संत पापा लियो ने कहा कि वह उन्हें सामुदायिक जीवन को पवित्रता की जगह अपने धर्म प्रचार में प्रेरणा, गवाही और ताकत का स्रोत मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, असल में यह सब कुछ एक साथ साझा करने से ही होता है, जिसमें भौतिक चीजें, आध्यात्मिक अनुभव, धर्म प्रचार के आदर्श और दान पुण्य की सेवा शामिल है, जिससे पुनर्जीवित प्रभु की छिपी हुई मौजूदगी आपके बीच जाहिर होती है। इस भावना के साथ संत पापा ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि सोच विचार, बातचीत और प्रार्थना के ये दिन आपको अपने धर्म समाज के अंदर और उनके बीच भाईचारे के मेल को गहरा करने के तरीके समझने में मदद करेंगे और इस तरह आप उन अलग अलग समुदायों और धर्म प्रचार में मसीह के लिए एक साथ खुशी से भरी और सच्ची गवाही देना जारी रख पाएंगे जहां आप सेवा करते हैं। संत पापा ने अपनी बात खत्म करते हुए उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया और एशिया के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ FABC की 12वीं महासभा 20 जुलाई सोमवार को इंडोनेशिया के जकार्ता में शुरू हुई। पूरे एशिया से 120 से ज्यादा कार्डिनल और धर्माध्यक्ष एक सप्ताह के लिए प्रार्थना, मनन चिंतन और पूरे महाद्वीप में कलीसिया के मिशन पर सोच विचार करने हेतु एकत्रित हुए हैं। उद्घाटन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए गोवा और दामन के महाधर्माध्यक्ष और FABC के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेर्राओ ने एशिया के कई हिस्सों में अल्पसंख्यक के तौर पर रहने वाले क्रिश्चियों की स्थिति पर बातें की। उन्होंने कहा, अपने पूरे इतिहास में कलीसिया ने हमेशा मुश्किल हालात का सामना किया है। उन्होंने आगे कहा कि डर से जवाब देने के बजाय कलीसिया रिश्ते बनाने, बातचीत को बढ़ावा देने और मेल मिलाप को बढ़ावा देने के लिए बुलाई गई है। इस मिशन के लिए ख्रिस्तियों को लोगों, संस्कृति और धर्मों के बीच पुल बनाने वाले बनने की जरूरत है। संत पापा लियो 14वें के विशेष दूत कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने 21 जुलाई को एशिया के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ FABC की 12वीं महासभा की शुरुआत की। उन्होंने सिनोडालिटी को दुनिया के लिए कलीसिया का सबसे बड़ा तोहफा बताया और एशिया की कलीसियाओं से बातचीत, मेल मिलाप और भाईचारे के जरिए शांति बनाने वाले बनने की अपील की। उद्घाटन मिस्सा समारोह की अध्यक्षता करते हुए कार्डिनल ग्रेशियस ने कहा कि कलीसिया का मिशन लोगों को एक साथ लाना, मेल मिलाप को बढ़ावा देना और शांति का जरिया बनना है। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, हमारा मिशन पुल बनाने वाला बनना है। कलीसिया पुल बनाने के लिए बुलाई गई है। इस समारोह की एक और खास बात संतों की प्रार्थना थी, जिसमें पूरे एशिया के संतों का आह्वान किया गया। सभा ने चीन, भारत, जापान, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, हांगकांग, थाईलैंड, म्यांमार, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, लाओस और अफगानिस्तान के संतों की मध्यस्थता से प्रार्थना की,
जिसे महाद्वीप की समृद्ध क्रिस्तीय विरासत पर जोर दिया गया। उधर सांदिनिस्ता क्रांति की 47वीं वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए निकारागुआ के राष्ट्रपति दानियल ओर्टेगा ने घोषणा की कि अब कोई चुनाव नहीं होगा जो उनके विरोधियों को सरकार पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करने की अनुमति देगा। पहला संकेत गत वर्ष आया जब राष्ट्रपति दानियल ओर्टेगा ने कई संवैधानिक सुधार पेश किए, जिसमें दूसरे उपायों के साथ साथ अपनी पत्नी रोसारियो मुरिल्लो को उपराष्ट्रपति बनाया गया और राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल तक बढ़ा दिया गया। 80 साल के राष्ट्रपति, जो 1980 के दशक में राष्ट्रपति बनने की पहली अवधि के बाद 2007 से लगातार सत्ता में बने हुए हैं, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि चुनाव औपचारिक रूप से कैसे खत्म किए जाएंगे। यह घोषणा अगले चुनाव से पहले हुई है, जो नवंबर 2027 में होने वाली थी। उधर मंगलवार को इजरायली हवाई हमले में 6 लोगों के एक परिवार की मौत हो गई। यह पट्टी पर लगातार हो रहे जानलेवा हमलों में से सबसे नया है, जब से 9 महीने से ज्यादा पहले अमेरिका के समर्थन वाले युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। माता पिता और उनके 4 बच्चों की मौत हो गई जब वे सबरा इलाके में अपने घर में सो रहे थे। हमले में उनके घर में आग लग गई। इजरायली सेना ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उसका निशाना हमास में एक मिलिटेंट था और वह अभी भी हमले के नतीजे की जांच कर रही है। फिलिस्तीनी डॉक्टरों ने यह भी कहा कि मंगलवार को बाद में IDF ने मध्य गाजा पट्टी में एक और गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें 2 लोग मारे गए और दूसरे घायल हो गए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, बुधवार कार्यक्रम के अंतर्गत संगीत कला एवं सुंदरता के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं।
1: La musica, l'arte, la bellezza è veramente uno strumento che ci aiuta a guardare con il movimento verso Dio, quello che è veramente una delle parti migliori dell'essere umano.
0: संगीत कला एवं सुंदरता मनोरंजन के अच्छे माध्यम हैं, लेकिन इनका महत्व सिर्फ इतना ही तक सीमित नहीं है। ये हमें ईश्वर की ओर एवं मानव जीवन के सर्वोत्तम मूल्यों की ओर अग्रसर करते हैं। कस्तिल गंदोल्फो में पोप लियो 14वें के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अल्बानो धर्म प्रांत ने उनके सम्मान में एक विशेष संगीत संध्या का आयोजन किया।

0: Albano che Thamadash Vincenzo Viva ne kaha.
1: Il fatto che Vostra Santità abbia trovato qui un luogo per il riposo settimanale, per la pausa estiva, ci onora e ci riempie di gratitudine.
0: संत पिता ने अपने पोप बनने के इस पहले अत्यंत व्यस्त एवं फलदायी वर्ष के दौरान अपने विश्राम के लिए कस्तिल गंदोल्फो को एक प्रिय एवं शांत स्थान के रूप में चुना है। यह एक ऐसा आश्रय स्थल है जहां शांति, मनोहरी प्राकृतिक सौंदर्य, इतिहास एवं कला एक साथ मिलकर तन और मन दोनों को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहाँ पोप की उपस्थिति अल्बानो की स्थानीय कलीसिया और इस क्षेत्र के लोगों के लिए अत्यंत हर्ष एवं आनंद का कारण बनी है। इस पर पोप ने अपने संबोधन में दुनिया की वर्तमान परिस्थिति पर गौर करते हुए कहा,
2: Viviamo in un mondo oggi dove manca la bellezza tante volte. Tanti problemi, guerre, conflitti, odio, violenza, mancanza di lavoro e tante altre cose.
0: हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कभी-कभी सुंदरता की कमी महसूस होती है। ऐसे समय में एक साथ जमा होना वास्तव में एक महान उपहार है। उन्होंने कहा, युद्ध, संघर्ष, नफरत, हिंसा, बेरोजगारी और अनेक चुनौतियों से घिरी इस दुनिया में भी सुंदरता लोगों को एकजुट कर सकती है और उनके दिलों को आशा से भर सकती है। शनिवार शाम को कस्तिल गंदोल्फो स्थित प्रेरितिक आवास के प्रांगण में आयोजित संगीत कार्यक्रम में पोप ने कहा कि ऐसे समय में एक साथ आना अपने आप में एक बड़ी बात है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया की परेशानियों से बढ़कर भी कोई चीज है। जब लोग मिलकर एक साथ आने का चुनाव करते हैं तो वे उस सुंदरता को प्रकट करते हैं जो दिल से दिल तक पहुँचती है और हमारी दृष्टि को स्वर्ग की ओर उठाने में मदद करती है। पोप लियो 14वें ने आगे कहा,
2: सपेते के

0: बेकर और संगीत निदेशक माएस्त्रो पियर कार्लो ओरिजियो ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जो विंचेंसो बेलियनी के प्रसिद्ध ओपेरा नॉर्मा पर आधारित था। अपने संबोधन में पोप लियो ने संगीतकारों एवं कलाकारों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं सभी कलाकारों का दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनके संगीत ने मुझे गहराई से भाव विभोर कर दिया है। उन्होंने अल्बानो धर्म प्रांत के प्रति भी आभार जताते हुए कहा,
1: alla diocesi di Albano che ha offerto questo concerto, questo hermoso dono.
0: इस संगीत कार्यक्रम का आयोजन यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए एक अनमोल उपहार है। सुंदरता से भरे इन क्षणों में हम सभी ने उस महान अनुभव को महसूस किया है, जो हमें ईश्वर की सृष्टि के मूल उद्देश्य सुंदरता के और निकट ले जाता है। संगीत संध्या की शुरुआत अल्बानो धर्म प्रांत के बिशप विंचेंसो वीवा के स्वागत संबोधन से हुए। उन्होंने पोप लियो चौदहवें का कस्तेल गंदोल्फो में पुनः आगमन पर स्वागत करते हुए कहा कि स्थानीय कलीसिया उनके आगमन से अत्यंत प्रसन्न एवं कृतज्ञ है। बिशप ने बतलाया कि इस संगीत कार्यक्रम का उद्देश्य पोप के प्रति आभार व्यक्त करना और संगीत के इस अनमोल उपहार को सभी को बांटना। विंचेंसो वेल्लिनी के प्रसिद्ध ओपेरा नॉर्मा का उल्लेख करते हुए बिशप वीबा ने उन महिलाओं एवं माताओं को भी याद किया, जो दुनिया के विभिन्न युद्धग्रस्त क्षेत्रों में अपने बच्चों और परिवारों के साथ संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत चुका रही हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं महिलाओं में एक ऐसे भविष्य की आशा दिखाई देती है जो मेल मिलाप एवं शांति पर आधारित है। यह संदेश पोप लियो चौदहवें की उस शांति अपील को भी प्रतिध्वनित करता है, जिसमें वे अपने पोप काल की शुरुआत से लगातार दोहराते आ रहे हैं। इस संगीत कार्यक्रम में 19वीं सदी के इटली के दो महान संगीतकारों निकोलो पागानिनी और विंचेंसो वेलिनी की रचनाओं को एक साथ प्रस्तुत किया गया। दोनों कृतियों की मधुर एवं भावपूर्ण शैली ने वाद्य संगीत की उत्कृष्टता एवं ओपेरा की अभिव्यक्ति को एक अनूठे संगीत सफर में पिरो दिया। विशेषकर बेल्लिनी के प्रसिद्ध ओपेरा नॉर्मा की पुनर्व्याख्या ने पियानो और ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से इसकी नायिका की पीड़ा, क्षमा एवं आत्म बलिदान की यात्रा को जीवंत किया। इस प्रस्तुति ने एक व्यक्तिगत कहानी को प्रेम एवं शांति की शक्ति पर आधारित एक सार्वभौमिक संदेश में बदल दिया। संगीत कार्यक्रम इस बात का भी प्रतीक था कि युद्ध की विभीषिका के बीच भी सुंदरता एवं आशा की आवाज गूंज सकती है। कस्तेल गंदोल्फो की शांत फिजा से उठी यह आशा पूरी दुनिया तक पहुंचने का संदेश देती है। संगीत संध्या का समापन ऑर्केस्ट्रा के पीछे लगी स्क्रीन पर तारों से भरे आकाश के मनमोहक दृश्य के साथ हुआ। प्रस्तुति के बाद पोप लियो चौदहवें ने कलाकारों एवं उपस्थित लोगों से मुलाकात की, उनका अभिवादन स्वीकार किया एवं परंपरागत शुभकामनाओं का आदान प्रदान करने के बाद प्रेरितिक आवास के प्रांगण से विदा हुए। श्रोताओं, बुधवार कार्यक्रम के अंतर्गत कस्तेल गंदोल्फो के प्रेरितिक आवास के प्रांगण में आयोजित संगीत कार्यक्रम में पोप के संदेश एवं कला तथा सौंदर्य के महत्व के बारे में सुन रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने अमेरिका में समर्पित पुरुषों के प्रमुख वरिष्ठों के सम्मेलन CMSM को भेजे एक पत्र में शुक्रिया अदा किया। यह 2026 राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अपनी 70वीं सालगिरह मना रहा है, जो फीनिक्स परिजोना में 20 से 23 जुलाई तक हो रही है, जिसकी थीम है मसीह में आज का सामुदायिक जीवन। 26 जुलाई को लिखे इस पत्र में, जो सम्मेलन के कार्यकारी निदेशक फादर फ्रैंक डोनियो SAC को लिखा गया था, संत पापा ने कहा कि जब वे अमेरिका के पुरुष धर्म संघियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के 7 दशक पूरे कर रहे हैं, यह इन सालों में मिली कृपा के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का सही समय है। संत पापा ने बातचीत के लिए जगह देने और अपने सदस्य समुदायों के नेताओं को सपोर्ट करने की उनकी कोशिशों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि इससे मसीह को समर्पित और उनके उदाहरण पर चलने वाले समर्पित लोगों की सार्वजनिक गवाही को मजबूत करने में मदद मिली है। इस साल के सम्मेलन की थीम पर सोचते हुए संत पापा लियो ने कहा कि वह उन्हें सामुदायिक जीवन को पवित्रता की जगह अपने धर्म प्रचार में प्रेरणा, गवाही और ताकत का स्रोत मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, असल में यह सब कुछ एक साथ साझा करने से ही होता है, जिसमें भौतिक चीजें, आध्यात्मिक अनुभव, धर्म प्रचार के आदर्श और दान पुण्य की सेवा शामिल है, जिससे पुनर्जीवित प्रभु की छिपी हुई मौजूदगी आपके बीच जाहिर होती है। इस भावना के साथ संत पापा ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि सोच विचार, बातचीत और प्रार्थना के ये दिन आपको अपने धर्म समाज के अंदर और उनके बीच भाईचारे के मेल को गहरा करने के तरीके समझने में मदद करेंगे और इस तरह आप उन अलग अलग समुदायों और धर्म प्रचार में मसीह के लिए एक साथ खुशी से भरी और सच्ची गवाही देना जारी रख पाएंगे जहां आप सेवा करते हैं। संत पापा ने अपनी बात खत्म करते हुए उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया और एशिया के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ FABC की 12वीं महासभा 20 जुलाई सोमवार को इंडोनेशिया के जकार्ता में शुरू हुई। पूरे एशिया से 120 से ज्यादा कार्डिनल और धर्माध्यक्ष एक सप्ताह के लिए प्रार्थना, मनन चिंतन और पूरे महाद्वीप में कलीसिया के मिशन पर सोच विचार करने हेतु एकत्रित हुए हैं। उद्घाटन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए गोवा और दामन के महाधर्माध्यक्ष और FABC के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेर्राओ ने एशिया के कई हिस्सों में अल्पसंख्यक के तौर पर रहने वाले क्रिश्चियों की स्थिति पर बातें की। उन्होंने कहा, अपने पूरे इतिहास में कलीसिया ने हमेशा मुश्किल हालात का सामना किया है। उन्होंने आगे कहा कि डर से जवाब देने के बजाय कलीसिया रिश्ते बनाने, बातचीत को बढ़ावा देने और मेल मिलाप को बढ़ावा देने के लिए बुलाई गई है। इस मिशन के लिए ख्रिस्तियों को लोगों, संस्कृति और धर्मों के बीच पुल बनाने वाले बनने की जरूरत है। संत पापा लियो 14वें के विशेष दूत कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने 21 जुलाई को एशिया के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ FABC की 12वीं महासभा की शुरुआत की। उन्होंने सिनोडालिटी को दुनिया के लिए कलीसिया का सबसे बड़ा तोहफा बताया और एशिया की कलीसियाओं से बातचीत, मेल मिलाप और भाईचारे के जरिए शांति बनाने वाले बनने की अपील की। उद्घाटन मिस्सा समारोह की अध्यक्षता करते हुए कार्डिनल ग्रेशियस ने कहा कि कलीसिया का मिशन लोगों को एक साथ लाना, मेल मिलाप को बढ़ावा देना और शांति का जरिया बनना है। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, हमारा मिशन पुल बनाने वाला बनना है। कलीसिया पुल बनाने के लिए बुलाई गई है। इस समारोह की एक और खास बात संतों की प्रार्थना थी, जिसमें पूरे एशिया के संतों का आह्वान किया गया। सभा ने चीन, भारत, जापान, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, हांगकांग, थाईलैंड, म्यांमार, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, लाओस और अफगानिस्तान के संतों की मध्यस्थता से प्रार्थना की, जिससे महाद्वीप की समृद्ध
क्रिस्तीय विरासत पर जोर दिया गया। उधर सैंडिनिस्ता क्रांति की 47वीं वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए निकारागुआ के राष्ट्रपति दानियल ओर्टेगा ने घोषणा की कि अब कोई चुनाव नहीं होगा जो उनके विरोधियों को सरकार पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करने की अनुमति देगा। पहला संकेत गत वर्ष आया जब राष्ट्रपति दानियल ओर्टेगा ने कई संवैधानिक सुधार पेश किए, जिसमें दूसरे उपायों के साथ साथ अपनी पत्नी रोसारियो मुरिल्लो को उपराष्ट्रपति बनाया गया और राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल तक बढ़ा दिया गया। 80 साल के राष्ट्रपति, जो 1980 के दशक में राष्ट्रपति बनने की पहली अवधि के बाद 2007 से लगातार सत्ता में बने हुए हैं, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि चुनाव औपचारिक रूप से कैसे खत्म किए जाएंगे। यह घोषणा अगले चुनाव से पहले हुई है जो नवंबर 2027 में होने वाली थी। उधर मंगलवार को इजरायली हवाई हमले में 6 लोगों के एक परिवार की मौत हो गई। यह पट्टी पर लगातार हो रहे जानलेवा हमलों में से सबसे नया है, जब से 9 महीने से ज्यादा पहले अमेरिका के समर्थन वाले युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। माता पिता और उनके 4 बच्चों की मौत हो गई जब वे सबरा इलाके में अपने घर में सो रहे थे। हमले में उनके घर में आग लग गई। इजरायली सेना ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उसका निशाना हमास में एक मिलिटेंट था और वह अभी भी हमले के नतीजे की जांच कर रही है। फिलिस्तीनी डॉक्टरों ने यह भी कहा कि मंगलवार को बाद में IDF ने मध्य गाजा पट्टी में एक और गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें 2 लोग मारे गए और दूसरे घायल हो गए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र

0: अमृत होकर न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: ज्योति का पहला भेद, यीशु यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का दूसरा भेद, काना के विवाह भोज में यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का तीसरा भेद, मन परिवर्तन के आह्वान के साथ प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का चौथा भेद प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कन्या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का पांचवा भेद, पास का रहस्य के सांस्कारिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नवियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

0: और नित्य
1: कुमारी
0: कुमारी
1: मरियम
0: मरियम की
1: की
0: प्रार्थना
1: प्रार्थना
0: द्वारा
1: द्वारा
0: हमको
1: हमको
0: इस
1: इस
0: लोक
1: लोक
0: से
1: के
0: दुख
1: दुख
0: से
1: से
0: मुक्त
1: मुक्त
0: होकर
1: होकर
0: अनंत
1: अनंत
0: सुख
1: सुख
0: भोगने
1: भोगने
0: दे,
1: दे।
0: ख्रीस्त
1: ख्रीस्त हमारे
0: हमारे
1: प्रभु
0: प्रभु
1: के
0: के
1: द्वारा
0: द्वारा,
1: आमीन।
0: आमीन।
1: पिता
0: पिता
1: और
0: और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न है।

पृथ्वी के सारे कार्यकलाप में यही बुराई है कि सबकी गति एक जैसी है। मनुष्यों का हृदय दुष्टता से भरा है। जब तक वे जीवित रहते हैं उनके हृदय में पागलपन है और उसके बाद वे मृतकों के पास जाते हैं। जब तक जीवन है तब तक आशा है। मुर्दा सिंह से जिंदा कुत्ता अच्छा है। जो जीवित हैं जानते हैं कि उन्हें मरना होगा, किंतु मृतक कुछ नहीं जानते। उन्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, उनका नाम तक भुला दिया जाएगा। उनका प्यार, उनका बैर और उनकी ईर्ष्या, यह सब मिट गया है। पृथ्वी के सारे कार्यकलाप में अब उनका कोई भाग नहीं। श्रोताओ, ये थे उपदेशक ग्रंथ के नवे अध्याय के तीसरे और चौथे पदों के शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं शब्दों की व्याख्या कर हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। नवा अध्याय एक प्रकार से आठवें अध्याय के भाव को ही जारी रखता है। यह हमें जीवन के अर्थ पर चिंतन के लिए बाध्य करता है, बारंबार याद दिलाता है कि अंत में सभी मनुष्यों की गति एक जैसी होती है, चाहे वे धर्मी हो या विधर्मी। श्रोताओ, ऐसा प्रतीत होता है कि एक क्षण के लिए उपदेशक यह भूल गया था कि ईश्वर के कार्य उसके अदृश्य स्वरूप को, उनकी शाश्वत शक्तिमता को विश्वास की आंखों से देखा जाना जरूरी है। नवे अध्याय के तीसरे और चौथे पदों में उपदेशक सुलेमान मनुष्यों की मूर्खता पर विचार करता है और इस विश्वास की अभिव्यक्ति करता है कि इस धरती पर मनुष्य का संपूर्ण जीवन, उसका सारा अस्तित्व, उसकी चेतना जीवन के साथ ही खत्म हो जाती है। मृत्यु के बाद उसका कुछ भी नहीं रह जाता, केवल उसके द्वारा बोले गए प्यार के शब्द, उसके द्वारा संपादित काम रह जाते हैं। यहाँ एक बार फिर उपदेशक ने मनुष्यों को चेतावनी देनी चाहिए है, और वह यह कि जब तक जीवन है तब तक हम भले कार्यों में लगें, जरूरतमंद की मदद करें तथा दुष्टता और बुराई से दूर रहें। केवल इस जीवन के बारे में नहीं, अपितु इस जीवन के परे सोचें, अनंत जीवन के बारे में सोचें, जो हमें अन्यों की सहायता से, दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना से मिल सकता है।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 9वें अध्याय के 7 से लेकर 9 तक के पदों का पाठ कर इन पर तनिक विचार करें। इन पदों में सुलेमान हम सबसे और युग युगांतर तक के मनुष्यों से आग्रह करता है कि वे जीवन और जीवन के आनंद को ईश्वर का वरदान माने, हर पल उसी की महिमा का गुणगान करें। ये पद इस प्रकार हैं: जाओ आनंद के साथ अपनी रोटी खाओ और प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहकर अंगूरी पियो, क्योंकि ईश्वर उसके लिए अपनी स्वीकृति दे चुका है। तुम हमेशा उज्जवल कपड़े पहनो और अपने सिर पर तेल लगाओ। ईश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पर जो व्यर्थ जीवन दिया है उसमें अपनी प्रिय पत्नी के साथ जीवन का आनंद भोगते रहो। यह जीवन में और पृथ्वी पर तुम्हारे परिश्रम में तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारे हाथ जो भी काम करे उसे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधोलोक में जहां तुम जाने वाले हो वहां न तो काम है न विचार न ज्ञान और न प्रज्ञा। श्रोताओ, उपदेशक के उक्त पदों में निहित विश्लेषण कुछ विनोदपूर्ण प्रतीत हो सकता है। जिंदगी पूरी तरह से बेकार है और हमारी एक जैसी मौत, किस्मत और नियति इसे साबित कर देती है। अस्तु उसका कहना है कि अब तक जो कुछ भी उसने कहा है उसे भूल जाओ और जीवन का आनंद उठाओ। वस्तुतः यह निराश पुरुषों और महिलाओं को दी गई छोटी सी उम्मीद है। उपदेशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के 13वें पद पर यदि गौर किया जाए तो इसमें ईश्वर की महान शक्ति पर जोर दिया गया है। उपदेशक कहता है, ईश्वर के कार्यों पर विचार करो। जिसे ईश्वर ने टेढ़ा कर दिया उसे कौन सीधा कर सकता है? यहां हमें भाग्य या नियति और इच्छा दोनों का एहसास होता है। संभवतः इन शब्दों से उपदेशक यह कहना चाहता था कि मुझे उम्मीद है कि ईश्वर ने तुम्हारे कार्यों को पहले ही से स्वीकृति दे दी है, क्योंकि यदि ईश्वर उसे स्वीकार नहीं करते तो तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाते। फिर कहता है, ईश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पर जो व्यर्थ जीवन दिया है उसमें अपनी प्रिय पत्नी के साथ जीवन का आनंद भोगते रहो। यह जीवन में और पृथ्वी पर तुम्हारे परिश्रम में तुम्हारा भाग्य है। श्रोताओ, सुलेमान इस बात से भलीभांति परिचित था कि इस संसार में उम्दा भोजन, मदिरा पान, उत्तम पहनावा और आरामदायक और साथ ही प्यार करने वाली पत्नी सुख के साधन होते हैं। वह खुद इस जीवन का सुख भोग चुका था, इसलिए अपने सुनने वालों को भी यही परामर्श दे रहा था कि जो जीवन मिला है उसी में सुखी रहो और आनंद मनाओ। उज्ज्वल कपड़े और सिर पर तेल लगाने की बात उसने इसलिए की कि मध्य पूर्व के देशों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और गर्म जलवायु में उज्ज्वल कपड़े और सिर पर तेल लगाने से बहुत आराम मिलता है। सुलेमान का परामर्श है कि अपने व्यर्थ जीवन को व्यक्ति सुखी बनाए, उसे बेहतर बनाने का प्रयास करे और उसे अर्थ प्रदान करे। कहता है कि अपनी प्रिय पत्नी के साथ जीवन का आनंद भोगो। श्रोताओ, वैवाहिक जीवन की यही मांग होती है कि पति पत्नी के बीच प्यार हो, विश्वास हो, सम्मान हो, तब ही उनका वैवाहिक जीवन सुखी हो सकता है। एफेसियों को प्रेषित पत्र के 5वें अध्याय के 25वें पद में संत पॉल लिखते हैं, पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है, उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित कर दिया। श्रोताओ, जिंदगी की जिम्मेदारियों के बीच व्यक्ति की सारी मेहनत में हिम्मत का मिलना भी शामिल होता है। एक प्रकार से उपदेशक जीवन की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बीच जीवन जीने के लिए हम सबको प्रोत्साहन प्रदान करता है। 9वें अध्याय के 10वें पद में उपदेशक अपने परामर्श को जारी रखते हुए कहता है, तुम्हारे हाथ जो भी काम करें उसे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधोलोक में जहां तुम जाने वाले हो वहां न तो काम है न विचार न ज्ञान और न प्रज्ञा। श्रोताओ, उपदेशक के इस नजरिए को हम प्रभु ईश्वर के प्रति अपनी अभी की सेवा में अपना सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान ने कल का काम करके ईश्वर की सेवा नहीं की।
श्रोताओं, आलसी, अकर्मण्य और निष्क्रिय होने के लिए मनुष्य का सृजन नहीं किया गया था। मनुष्य की सृष्टि इसलिए नहीं की गई थी कि वह आलसी रहे, न ही उसे आलसी, अकर्मण्य और निष्क्रिय होने के लिए सब प्राणियों में श्रेष्ठ चुना गया था, अपितु उसे ईश्वर की कृपा से पवित्र किया गया था, ताकि वह इस जीवन में अपने दायित्वों का भली भांति अनुपालन करे और ईश्वर के प्रति दिन ब दिन धन्यवाद ज्ञापित किया करे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें बुधवार को कस्तेल गंदोल्फो से वाले पियत्रा में पौत्र त्रित्वा को समर्पित एक पहाड़ी तीर्थालय गए। बुधवार सुबह को पोप ने वाले पियत्रा में पौत्र त्रित्वा के तीर्थालय का आकस्मिक दौरा किया। माउंट ओतेरे की चट्टान में बना यह तीर्थालय मध्य इटली के लाज़ो एवं अब्रुत्सो इलाकों की सीमा पर है। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान अनुसार संत पापा ने तीर्थालय के अंदर पौत्र त्रित्वा की तस्वीर के सामने प्रार्थना की और वहां भक्तों एवं धर्म संघ के समुदाय का अभिवादन किया। वाले पियत्रा की अपनी यात्रा के बाद पोप लियो 14वें सुबिया को गए, जहां उन्होंने संत बेनेडिक्ट के मठ का दौरा किया। मठ परिसर की यात्रा के दौरान वे 13वीं सदी के संत फ्रांसिस की तस्वीर के सामने मौन प्रार्थना की और संत बेनेडिक्ट की पौत्र गुफा में परंपरा के अनुसार संत की प्रतिमा के घुटने को चूमा। फिर उन्होंने वहां मौजूद लोगों के साथ हे हमारे पिता की प्रार्थना का पाठ किया। मठ और गुफा लगभग 1000 सालों से बेनेडिक्टाइन आध्यात्मिकता की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक माना जाता है। यह गुफा वह जगह है जहां 6वीं सदी की शुरुआत में नोरचा के युवा संत बेनेडिक्ट एक साधु की तरह रहते थे। इसी जंगल की गुफा में अकेले रहते समय ही संत बेनेडिक्ट अपने करिश्मे एवं आध्यात्मिकता को परिपक्व किया, जिससे उन्हें प्रथम मठवासी समुदाय बनाने और पश्चिमी मठवाद का बीज बोने का मौका मिला। बेनेडिक्टाइन समुदाय के साथ दोपहर का भोजन करने के बाद पोप लियो संत स्कोलास्टिका के मठ गए, जहां उन्होंने एकांत मठवास एवं कॉन्वेंट का दौरा किया। वहां के बाद पोप लियो कस्तेल गंदोल्फो लौटे। इससे पहले पोप लियो ने 20 जुलाई को मोंते कैसिनो का दौरा किया था, जहां उन्होंने दुनिया भर में शांति के लिए प्रार्थना की थी। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने देश एवं दुनिया तथा गजा की भलाई के लिए ईरान के साथ पुनः बातचीत शुरू करने और समझौता की उम्मीद जताई। किताब के प्रस्तुतिकरण के एक मौके पर उन्होंने कलीसिया की शांति के मजबूत संदेश के महत्व और बातचीत, कूटनीति और मेल मिलाप के द्वारा मतभेदों को दूर करने में उसकी भूमिका को भी दोहराया। दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तनाव बढ़ रहे हैं, जबकि शांति की कोई उम्मीद नहीं है। इन शब्दों के साथ वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने अंतोनियो प्रेसियोसी की किताब पास्का की शांति पोप जॉन 23वें से पोप लियो 14वें तक 2033 की जयंती की ओर के प्रस्तुतिकरण के मौके पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। यह प्रस्तुतिकरण बुधवार दोपहर 22 जुलाई को वैटिकन के लिए इतालवी राजदूतावास पलाज़ो बोरोमियो में हुआ था। यूक्रेन में युद्ध के नवीनतम घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कार्डिनल परोली ने कहा कि वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदश पॉल रिचर्ड गलाघर के अनुसार, जो अभी अभी युद्धग्रस्त देश से लौटे हैं, रविवार और सोमवार के बीच की रात ने सबसे भारी हमलों में से एक देखी। फिर ईरान की ओर रुख करते हुए कार्डिनल ने गौर किया कि समझौता ज्ञापन अब लागू नहीं है और उभरती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि यह कैसे खत्म होगा। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते हैं, शायद कोई नहीं। उन्होंने इस उम्मीद को याद करते हुए कहा कि जिस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था वह प्रभावी साबित होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि देश और दुनिया की भलाई के लिए एक स्थायी समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत फिर शुरू करनी होगी, क्योंकि ये स्थितियाँ शांति को खतरे में डालती हैं। कार्डिनल परोली ने अब्दुर्रहीम फकीर की मौत के बाद इतालवी शहर बोलोनिया में हुई हिंसा पर भी टिप्पणी की, जिसे पुलिस ने जमीन पर गिरा दिया था, और उन्होंने इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा, मुझे बस उम्मीद है कि सच सामने आएगा और इस बात पर जोर दिया कि आवश्यक जांच शांत माहौल में और निश्चय बिना हिंसा के की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हिंसा कभी लाभदायक नहीं होती। अंत में कार्डिनल परोलिन ने बातचीत और शांति को बढ़ावा देने के लिए कलीसिया की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा, कलीसिया ऐसे शब्द बोलना जारी रखती है

जो सेवा के हैं। उन्होंने बीज बोने वाले दृष्टांत को याद किया और उम्मीद जताई कि ये शब्द फल लाएंगे। उन्होंने अंत में कहा, कलीसिया इस संदेश को दोहराते नहीं थकती, नतीजे चाहे जो भी हों, इन मूल्यों पर जोर देते रहना सही है जो शांतिपूर्ण एवं निर्माणात्मक सहअस्तित्व के लिए जरूरी है। कार्डिनल ने किताब की ख्रिस्ती एकता पहलू पर भी प्रकाश डाला और उम्मीद जताई कि 2033 की असाधारण जयंती की ओर यात्रा ख्रिस्ती एकता को और अधिक बढ़ावा दे सकेगी और बातचीत, कूटनीति एवं मेल मिलाप के जरिए मतभेदों को दूर करने की कोशिश को मजबूत कर सकेगी। भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन CBCI ने नई दिल्ली में शांति से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज एवं आंसू गैस के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की है। एक बयान में CBCI ने कहा कि देश के युवा, जो देश के भविष्य हैं, शिक्षा प्रणाली में अधिक जवाबदेही और सुधारों की जायज मांगों के साथ सड़कों पर उतरे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अधिक बल प्रयोग को धर्माध्यक्षों ने हमारे लोकतंत्र की आत्मा पर दिल तोड़ने वाला हमला बताया। उन्होंने कार्रवाई के दौरान पीड़ित सभी छात्रों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई और कहा कि वे पारदर्शी, जवाबदेही और न्यायपूर्ण शिक्षा प्रणाली की उनकी कोशिश में उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। बयान में धर्माध्यक्षों ने कहा, हम आपका दर्द समझते हैं, आपकी आवाज सुनते हैं और एक पारदर्शी एवं न्यायपूर्ण शिक्षा पद्धति के लिए आपकी सही आवाज को दोहराते हैं। भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने जाने माने शिक्षाविद एवं पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के लिए भी अपना ठोस समर्थन जताया है, जो सही सुधारों की मांग को लेकर लंबे समय से भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी सेहत को लेकर गहरी चिंता जताई और अधिकारियों से अपील की कि वे उनकी मांगों पर दबाव डालने के बजाय दया और समझदारी से जवाब दें। संयम और रचनात्मक जुड़ाव की अपील करते हुए CBCI ने सरकार से प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सभी संबंधित हितधारकों के साथ सही बातचीत शुरू करने की अपील की है। इसने अधिकारियों से नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने की अपील की है, जिसमें शांति से एकत्रित होने और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की आज़ादी शामिल है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन। नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

पृथ्वी के सारे कार्यकलाप में यही बुराई है कि सबकी गति एक जैसी है। मनुष्यों का हृदय दुष्टता से भरा है। जब तक वे जीवित रहते हैं उनके हृदय में पागलपन है और उसके बाद वे मृतकों के पास जाते हैं। जब तक जीवन है तब तक आशा है। मुर्दा सिंह से जिंदा कुत्ता अच्छा है। जो जीवित हैं जानते हैं कि उन्हें मरना होगा, किंतु मृतक कुछ नहीं जानते। उन्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। उनका नाम तक भुला दिया जाएगा। उनका प्यार, उनका बैर और उनकी ईर्ष्या, ये सब मिट गया है। पृथ्वी के सारे कार्यकलाप में अब उनका कोई भाग नहीं। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के नवे अध्याय के तीसरे और चौथे पदों के शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं शब्दों की व्याख्या कर हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। नवा अध्याय एक प्रकार से आठवें अध्याय के भाव को ही जारी रखता है। यह हमें जीवन के अर्थ पर चिंतन के लिए बाध्य करता है। बारंबार याद दिलाता है कि अंत में सभी मनुष्यों की गति एक जैसी होती है, चाहे वे धर्मी हो या विधर्मी। श्रोताओं, ऐसा प्रतीत होता है कि एक क्षण के लिए उपदेशक यह भूल गया था कि ईश्वर के कार्य उसके अदृश्य स्वरूप को, उनकी शाश्वत शक्तिमता को विश्वास की आंखों से देखा जाना जरूरी है। नवे अध्याय के तीसरे और चौथे पदों में उपदेशक सुलेमान मनुष्यों की मूर्खता पर विचार करता है और इस विश्वास की अभिव्यक्ति करता है कि इस धरती पर मनुष्य का संपूर्ण जीवन, उसका सारा अस्तित्व, उसकी चेतना जीवन के साथ ही खत्म हो जाती है। मृत्यु के बाद उसका कुछ भी नहीं रह जाता, केवल उसके द्वारा बोले गए प्यार के शब्द, उसके द्वारा संपादित काम रह जाते हैं। यहाँ एक बार फिर उपदेशक ने मनुष्यों को चेतावनी देनी चाहिए है, और वह यह कि जब तक जीवन है तब तक हम भले कार्यों में लगे, जरूरतमंद की मदद करें तथा दुष्टता और बुराई से दूर रहें। केवल इस जीवन के बारे में नहीं, अपितु इस जीवन के परे सोचें, अनंत जीवन के बारे में सोचें, जो हमें अन्यों की सहायता से दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना से मिल सकता है।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 9वें अध्याय के 7 से लेकर 9 तक के पदों का पाठ कर इन पर तनिक विचार करें। इन पदों में सुलेमान हम सबसे और युग युगांतर तक के मनुष्यों से आग्रह करता है कि वे जीवन और जीवन के आनंद को ईश्वर का वरदान माने, हर पल उसी की महिमा का गुणगान करें। ये पद इस प्रकार है, जाओ आनंद के साथ अपनी रोटी खाओ और प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहकर अंगूरी पियो, क्योंकि ईश्वर उसके लिए अपनी स्वीकृति दे चुका है। तुम हमेशा उज्जवल कपड़े पहनो और अपने सिर पर तेल लगाओ। ईश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पर जो व्यर्थ जीवन दिया है उसमें अपनी प्रिय पत्नी के साथ जीवन का आनंद भोगते रहो। यह जीवन में और पृथ्वी पर तुम्हारे परिश्रम में तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारे हाथ जो भी काम करे उसे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधोलोक में जहां तुम जाने वाले हो वहां न तो काम है न विचार न ज्ञान और न प्रज्ञा। श्रोताओ, उपदेशक के उक्त पदों में निहित विश्लेषण कुछ विनोदपूर्ण प्रतीत हो सकता है। जिंदगी पूरी तरह से बेकार है और हमारी एक जैसी मौत, किस्मत और नियति इसे साबित कर देती है। अस्तु उसका कहना है कि अब तक जो कुछ भी उसने कहा है उसे भूल जाओ और जीवन का आनंद उठाओ। वस्तुतः यह निराश पुरुषों और महिलाओं को दी गई छोटी सी उम्मीद है। उपदेशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के 13वें पद पर यदि गौर किया जाए तो इसमें ईश्वर की महान शक्ति पर जोर दिया गया है। उपदेशक कहता है, ईश्वर के कार्यों पर विचार करो, जिसे ईश्वर ने टेढ़ा कर दिया उसे कौन सीधा कर सकता है। यहां हमें भाग्य या नियति और इच्छा दोनों का एहसास होता है। संभवतः इन शब्दों से उपदेशक यह कहना चाहता था कि मुझे उम्मीद है कि ईश्वर ने तुम्हारे कार्यों को पहले ही से स्वीकृति दे दी है, क्योंकि यदि ईश्वर उसे स्वीकार नहीं करते तो तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाते। फिर कहता है, ईश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पर जो व्यर्थ जीवन दिया है उसमें अपनी प्रिय पत्नी के साथ जीवन का आनंद भोगते रहो। यह जीवन में और पृथ्वी पर तुम्हारे परिश्रम में तुम्हारा भाग्य है। श्रोताओ, सुलेमान इस बात से भलीभांति परिचित था कि इस संसार में उम्दा भोजन, मदिरा पान, उत्तम पहनावा और आरामदायक और साथ ही प्यार करने वाली पत्नी सुख के साधन होते हैं। वह खुद इस जीवन का सुख भोग चुका था, इसलिए अपने सुनने वालों को भी यही परामर्श दे रहा था कि जो जीवन मिला है उसी में सुगर्म जलवायु में उज्जवल कपड़े और सिर पर तेल लगाने से बहुत गर्म जलवायु में उज्जवल कपड़े और सिर पर तेल लगाने से बहुत आराम मिलता है। सुलेमान का परामर्श है कि अपने व्यर्थ जीवन को व्यक्ति सुखी बनाए, उसे बेहतर बनाने का प्रयास करे और उसे अर्थ प्रदान करे। कहता है कि अपनी प्रिय पत्नी के साथ जीवन का आनंद भोगो। श्रोताओ, वैवाहिक जीवन की यही मांग होती है कि पति पत्नी के बीच प्यार हो, विश्वास हो, सम्मान हो, तब ही उनका वैवाहिक जीवन सुखी हो सकता है। एफेसियों को प्रेषित पत्र के 5वें अध्याय के 25वें पद में संत पॉल लिखते हैं, पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है, उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित कर दिया। श्रोताओ, जिंदगी की जिम्मेदारियों के बीच व्यक्ति की सारी मेहनत में हिम्मत का मिलना भी शामिल होता है। एक प्रकार से उपदेशक जीवन की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बीच जीवन जीने के लिए हम सबको प्रोत्साहन प्रदान करता है। 9वें अध्याय के 10वें पद में उपदेशक अपने परामर्श को जारी रखते हुए कहता है, तुम्हारे हाथ जो भी काम करें उसे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधोलोक में जहां तुम जाने वाले हो वहां न तो काम है न विचार न ज्ञान और न प्रज्ञा। श्रोताओ, उपदेशक के इस नजरिए को हम प्रभु ईश्वर के प्रति अपनी अभी की सेवा में अपना सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान ने कल का काम करके ईश्वर की सेवा नहीं की। श्रोताओ, आलसी, अकर्मण्य
और निष्क्रिय होने के लिए मनुष्य का सृजन नहीं किया गया था। मनुष्य की सृष्टि इसलिए नहीं की गई थी कि वह आलसी रहे, न ही उसे आलसी, अकर्मण्य और निष्क्रिय होने के लिए सब

प्राणियों में श्रेष्ठ चुना गया था, अपितु उसे ईश्वर की कृपा से पवित्र किया गया था, ताकि वह इस जीवन में अपने दायित्वों का भली भांति अनुपालन करे और ईश्वर के प्रति दिन ब दिन धन्यवाद ज्ञापित किया करे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें बुधवार को कस्तेल गंदोल्फो से वाले पियत्रा में पौत्र त्रित्वा को समर्पित एक पहाड़ी तीर्थालय गए। बुधवार सुबह को पोप ने वाले पियत्रा में पौत्र त्रित्वा के तीर्थालय का आकस्मिक दौरा किया। माउंट ओतेरे की चट्टान में बना यह तीर्थालय मध्य इटली के लात्सो एवं अब्रुत्सो इलाकों की सीमा पर है। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान अनुसार संत पापा ने तीर्थालय के अंदर पौत्र त्रित्वा की तस्वीर के सामने प्रार्थना की और वहां भक्तों एवं धर्म संघ के समुदाय का अभिवादन किया। वाले पियत्रा की अपनी यात्रा के बाद पोप लियो 14वें सुबिया को गए, जहां उन्होंने संत बेनेडिक्ट के मठ का दौरा किया। मठ परिसर की यात्रा के दौरान वे 13वीं सदी के संत फ्रांसिस की तस्वीर के सामने मौन प्रार्थना की और संत बेनेडिक्ट की पौत्र गुफा में परंपरा के अनुसार संत की प्रतिमा के घुटने को चूमा। फिर उन्होंने वहां मौजूद लोगों के साथ हे हमारे पिता की प्रार्थना का पाठ किया। मठ और गुफा लगभग 1000 सालों से बेनेडिक्टाइन आध्यात्मिकता की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक माना जाता है। यह गुफा वह जगह है जहां 6वीं सदी की शुरुआत में नोरचा के युवा संत बेनेडिक्ट एक साधु की तरह रहते थे। इसी जंगल की गुफा में अकेले रहते समय ही संत बेनेडिक्ट अपने करिश्मे एवं आध्यात्मिकता को परिपक्व किया, जिससे उन्हें प्रथम मठवासी समुदाय बनाने और पश्चिमी मठवाद का बीज बोने का मौका मिला। बेनेडिक्टाइन समुदाय के साथ दोपहर का भोजन करने के बाद पोप लियो संत स्कोलास्टिका के मठ गए, जहां उन्होंने एकांत मठवास एवं कॉन्वेंट का दौरा किया। वहां के बाद पोप लियो कस्तेल गंदोल्फो लौटे। इससे पहले पोप लियो ने 20 जुलाई को मोंते कैसिनो का दौरा किया था, जहां उन्होंने दुनिया भर में शांति के लिए प्रार्थना की थी। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोलिन ने देश एवं दुनिया तथा गजा की भलाई के लिए ईरान के साथ पुनः बातचीत शुरू करने और समझौता की उम्मीद जताई। किताब के प्रस्तुतिकरण के एक मौके पर उन्होंने कलीसिया की शांति के मजबूत संदेश के महत्व और बातचीत, कूटनीति और मेल मिलाप के द्वारा मतभेदों को दूर करने में उसकी भूमिका को भी दोहराया। दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तनाव बढ़ रहे हैं, जबकि शांति की कोई उम्मीद नहीं है। इन शब्दों के साथ वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोलिन ने अंतोनियो प्रेसियोसी की किताब पास्का की शांति पोप जॉन 23वें से पोप लियो 14वें तक 2033 की जयंती की ओर के प्रस्तुतिकरण के मौके पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। यह प्रस्तुतिकरण बुधवार दोपहर 22 जुलाई को वैटिकन के लिए इतालवी राजदूतावास पलाज़ो बोरोमियो में हुआ था। यूक्रेन में युद्ध के नवीनतम घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कार्डिनल परोलिन ने कहा कि वैटिकन विदेश सचिव महादमदश पॉल रिचर्ड गलाघर के अनुसार, जो अभी अभी युद्धग्रस्त देश से लौटे हैं, रविवार और सोमवार के बीच की रात ने सबसे भारी हमलों में से एक देखी। फिर ईरान की ओर रुख करते हुए कार्डिनल ने गौर किया कि समझौता ज्ञापन अब लागू नहीं है और उभरती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि यह कैसे खत्म होगा। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते हैं, शायद कोई नहीं। उन्होंने इस उम्मीद को याद करते हुए कहा कि जिस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था वह प्रभावी साबित होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि देश और दुनिया की भलाई के लिए एक स्थायी समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत फिर शुरू करनी होगी, क्योंकि ये स्थितियाँ शांति को खतरे में डालती हैं। कार्डिनल परोलिन ने अब्दुर्रहीम फकीर की मौत के बाद इतालवी शहर बोलोनिया में हुई हिंसा पर भी टिप्पणी की, जिससे पुलिस ने जमीन पर गिरा दिया था, और उन्होंने इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा, मुझे बस उम्मीद है कि सच सामने आएगा और इस बात पर जोर दिया कि आवश्यक जांच शांत माहौल में और निश्चय ही बिना हिंसा के की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हिंसा कभी लाभदायक नहीं होती। अंत में कार्डिनल परोलिन ने बातचीत और शांति को बढ़ावा देने के लिए कलीसिया की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा, कलीसिया ऐसे शब्द बोलना जारी रखती है जो सेवा के हैं। उन्होंने बीज बोने वाले दृष्टांत को याद किया और उम्मीद जताई कि ये शब्द फल लाएंगे। उन्होंने अंत में कहा, कलीसिया इस संदेश को दोहराते नहीं थकती, नतीजे चाहे जो भी हों, इन मूल्यों पर जोर देते रहना सही है, जो शांतिपूर्ण एवं निर्माणात्मक सहअस्तित्व के लिए जरूरी है।
कार्डिनल ने किताब के खुरिस्ते एकता पहलू पर भी प्रकाश डाला और उम्मीद जताई कि 2033 की असाधारण जयंती की ओर यात्रा खुरिस्ते एकता को और अधिक बढ़ावा दे सकेगी और बातचीत, कूटनीति एवं मेल मिलाप के जरिए मतभेदों को दूर करने की कोशिश को मजबूत कर सकेगी। भारतीय कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलन CBCI ने नई दिल्ली में शांति से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज एवं आंसू गैस के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की है। एक बयान में CBCI ने कहा कि देश के युवा, जो देश के भविष्य हैं, शिक्षा प्रणाली में अधिक जवाबदेही और सुधारों की जायज मांगों के साथ सड़कों पर उतरे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अधिक बल प्रयोग को धर्मदक्षों ने हमारे लोकतंत्र की आत्मा पर दिल तोड़ने वाला हमला बताया। उन्होंने कार्रवाई के दौरान पीड़ित सभी छात्रों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई और कहा कि वे पारदर्शी, जवाबदेही और न्यायपूर्ण शिक्षा प्रणाली की उनकी कोशिश में उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। बयान में धर्मदर्शों ने कहा, हम आपका दर्द समझते हैं, आपकी आवाज़ सुनते हैं और एक पारदर्शी एवं न्यायपूर्ण शिक्षा पद्धति के लिए आपकी सही आवाज को दोहराते हैं। भारतीय कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलन ने जाने माने शिक्षाविद एवं पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के लिए भी अपना ठोस समर्थन जताया है, जो सही सुधारों की मांग को लेकर लंबे समय से भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी सेहत को लेकर गहरी चिंता जताई और अधिकारियों से अपील की कि वे उनकी मांगों पर दबाव डालने के बजाय दया और समझदारी से जवाब दें। संयम और रचनात्मक जुड़ाव की अपील करते हुए CBCI ने सरकार से प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सभी संबंधित हितधारकों के साथ सही बातचीत शुरू करने की अपील की है। इसने अधिकारियों से नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने की अपील की है, जिसमें शांति से एकत्रित होने और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की आज़ादी शामिल है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।